0: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
1: 時計台の中にいます。
0: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
1: わかりました。
2: あ、カイト、こっちこっち。
3: ごめん、遅くなって。
4: ハルさんの知恵袋。
5: अब हारू सांग की जंबील का कॉर्नर। आज का मौजू है जापान की कन्वीनियंस स्टोर्स।
6: इरा, जापान के कन्वीनियंस स्टोर्स के बारे में आपका क्या तासुर है?
5: ये वाकई कन्वीनियंट यानी बासहूलत हैं। इसलिए मैं इनसे अक्सर खरीदारी करती हूँ और कभी कभार तो किसी से मुलाकात के मकाम के तौर पर भी इस्तेमाल करती हूँ।
6: जी, कन्वीनियंस स्टोर्स जापान के हर इलाके में पाए जाते हैं और इन्हें ढूंढना भी काफी आसान होता है। ज्यादातर कन्वीनियंस स्टोर साल भर 24 घंटे खुले होते हैं। इनमें तैयार खाने, सैंडविच, मिठाइयों और मशरूबात से लेकर स्टेशनरी और मैगजीन तक, यानी रोजमर्रा इस्तेमाल की वसी अकसाम की चीजें दस्तियाब होती हैं। बाज में तो शैम्पू, साबुन, कपड़े धोने का पाउडर, मोबाइल फोन की बैटरियां और जेर जामे और मोजे तक दस्तियाब होते हैं।
5: यानी इनमें रोजमर्रा जिंदगी की तमाम ही चीजें दस्तियाब होती हैं।
6: जी हाँ, तकरीबन तमाम ही चीजें। इनमें नस्फ ATM से रकम भी निकलवाई जा सकती है और यहाँ से इंटरनेट के जरिए खरीदे गए टिकट वगैरह भी वसूल किए जा सकते हैं। ये वाकई कन्वीनियंस यानी सहूलत के हामिल स्टोर्स हैं।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 21 जुलाई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। जापान के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि रविवार को चीन के एक नौसैनिक पोत ने जापान के धुर दक्षिणी द्वीप के आसपास स्थित देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी ईईजेड के भीतर मशीन गनों से गोलीबारी अभ्यास किया। मंत्रालय के अनुसार प्रशांत महासागर में ओकिनो तोरिशिमा द्वीप से लगभग 330 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में चीनी नौसेना के 2 मिसाइल विध्वंसक और 1 आपूर्ति पोत, साथ ही रूसी नौसेना का 1 फ्रिगेट देखा गया। जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल ने पुष्टि की कि ये चारों जहाज पूर्वोत्तर दिशा की ओर जा रहे थे। बाद में पुष्टि की गई कि इन 4 जहाजों में से 1 यानी चीन के मिसाइल विध्वंसक ने द्वीप के लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और जापान के ईईजेड के भीतर अभ्यास किया। चीनी विध्वंसक पोत के चालक दल ने आसपास के जलक्षेत्र में मौजूद जहाजों को अभ्यास स्थल और अवधि के बारे में सूचना पहले ही दे दी थी। अधिकारियों ने यह पुष्टि भी की कि अभ्यास के समय रूसी फ्रिगेट भी आसपास के जलक्षेत्र में मौजूद था। जापान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार उसकी जानकारी

जानकारी में ये पहला मामला है जब जापान के ईईजेड के भीतर किसी विदेशी पोत द्वारा गोलीबारी अभ्यास किए जाने की जानकारी सार्वजनिक की गई है। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इस प्रकार के अभ्यास से आसपास के जल क्षेत्र में संचालित जहाज़ों को खतरा हो सकता है। मंत्रालय ने राजनयिक माध्यमों से चीन से संपर्क किया है और वो क्षेत्र पर लगातार नज़र रखते हुए हालात की टोह ले रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि ओडेसा स्थित दक्षिणी काला सागर बंदरगाह से रवाना हो रहे एक मालवाहक जहाज पर रूसी हमले में 10 लोग मारे गए हैं। यूक्रेनी बंदरगाह प्राधिकरण व नौसेना के अनुसार रविवार को हुए इस हमले से गिनी बिसाओ के ध्वज वाले जहाज में आग लग गई। ये जहाज मकई ले जा रहा था। बंदरगाह प्राधिकरण का कहना है कि मारे गए 10 लोगों में चालक दल के भारतीय और सीरियाई सदस्य तथा प्राधिकरण का एक समुद्री पायलट शामिल है। ओडेसा क्षेत्र पर रूसी हमले तेज होते जा रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार जुलाई की शुरुआत से अब तक बच्चों सहित 28 लोग मारे जा चुके हैं जबकि 71 घायल हुए हैं। अमेरिका स्थित युद्ध अध्ययन संस्थान का कहना है कि जहाज़ों और काला सागर बंदरगाह सुविधाओं पर रूसी हमलों का उद्देश्य शायद यूक्रेन की अर्थव्यवस्था व निर्यात क्षमता को कमज़ोर करना है। द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए लोगों के अवशेषों को प्राप्त करने की मुहिम में जुटे एक जापानी समूह ने दक्षिणी ताइवान में प्रयोग के तौर पर खुदाई का काम शुरू कर दिया है। युद्ध में मारे गए लोगों की अस्थियां तलाश कर स्वदेश लाने से जुड़े इस जापानी समूह के प्रतिनिधियों ने स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ सोमवार को पिंदोन काउंटी के बाशी जलमार्ग से सटे तट पर खुदाई का काम शुरू किया। ताइवान और फिलीपींस के बीच स्थित इस जलमार्ग के आसपास का क्षेत्र युद्ध के दौरान एक अहम जहाजरानी मार्ग था। समूह ने 2 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी जमीन के एक हिस्से में सावधानी पूर्वक खुदाई की। समूह को जापान के कल्याण मंत्रालय ने इस कार्य के लिए भेजा है। समूह के अनुसार यदि अस्थियां मिली तो वो उन्हें प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। गौरतलब है कि अमरीकी पनडुब्बियों ने जापान की तत्कालीन शाही सेना के जहाज़ों को डुबो दिया था जिसमें कथित रूप से 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। बताया जाता है कि कई मृतकों के शव पिंदोन तट पर बहकर आए थे। खुदाई का काम 31 जुलाई तक 2 जगहों पर किया जाएगा। युद्ध में मारे गए लोगों के अवशेषों को ताइवान से बरामद करने के जापान सरकार के प्रयासों में बहुत कम प्रगति हुई है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है। यदि ताइवान में अस्थियां मिली और उन्हें बरामद किया गया तो लगभग आधी सदी बाद ऐसा पहली बार होगा।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि वो कनाडा से आयात होने वाली कई वस्तुओं पर 50% का अतिरिक्त शुल्क लगाएगा। उसका कहना है कि ये कदम अमेरिका से निर्यात होने वाली वस्तुओं जैसे कारों, मदिरा और डेयरी उत्पादों के साथ कनाडा के भेदभाव के जवाब में उठाया गया है। व्हाइट हाउस ने सोमवार को बताया कि ट्रंप ने 1930 में पारित शुल्क अधिनियम की धारा 338 के तहत उक्त शुल्क लगाने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार ये शुल्क कनाडा से आयातित वस्तुओं जैसे डेयरी उत्पाद, मदिरा और हॉकी स्टिक पर लागू होंगे और 19 अगस्त से प्रभावी होंगे। धारा 338 राष्ट्रपति को अमरीकी वस्तुओं के साथ भेदभाव करने वाले देशों से होने वाले आयात पर शुल्क लगाने का अधिकार देती है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि ये पहली बार है जब धारा 338 का इस्तेमाल शुल्क लगाने के लिए किया गया है। टोयोटा मोटर के नए अध्यक्ष और सीईओ कॉन केंता का कहना है कि वे वैश्विक वाहन उद्योग में तीव्र स्पर्धा के बीच आमदनी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कॉन ने अप्रैल में टोयोटा कंपनी की कमान संभाली और शनिवार को उन्होंने अपना पहला ग्रुप मीडिया साक्षात्कार दिया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि टोयोटा का मूल्य सृजन और कंपनी की आमदनी उसके

0: निर्माण स्थलों में होती है। कंपनी प्रमुख के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जमीनी स्तर पर काम कर रहे श्रमिकों की बात सुनूं और फिर सुधार करूं, जिसे हम काइज़ेन कहते हैं। कहा जा रहा है कि टोयोटा विकास और उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए उपयोग होने वाले हिस्से पुर्जों के प्रकारों को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी ग्राहकों की जरूरतें पूरी करने के लिए पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों सहित विभिन्न प्रकार के वाहन उपलब्ध कराती है। इसके चलते इस्तेमाल होने वाले पुर्जों की संख्या में वृद्धि हुई है और कारखानों में उन्हें रखने के लिए जगह बनाना एक चुनौती है। कौन ने कहा, टोयोटा की उत्पादन प्रणाली का मूल सिद्धांत स्टॉक तथा उसके भंडारण के लिए जगह घटाकर लागत में कटौती करना है। हम ऐसे बुनियादी उपायों को आगे बढ़ाते रहेंगे।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।